0: डैड।
1: राहुल कैसा है बेटा? Everything fine
0: डैड। इनफैक्ट बहुत खुश हूँ मैं। After a long time.
1: Hey, are you in love?
2: तू ही मुझको बता दे।
0: How do you know?
1: You're a bomb, Saleh. When the son is in love, the father just knows.

0: शहीद शेख के फैन काफी एक्साइटेड हो गए
1: हैं। फैंस को दोनों की जोड़ी काफी पसंद भी थी और हाल फिलहाल खबरों के मुताबिक दोनों ने ब्रेकअप कर लिया।
2: मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ
3: लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं।